ओके स्टार्ट टू लाइव कॉल्स आप अगले प्रोग्राम में हिस्से जुड़ो उसी पर 9 28 280 495 फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो गुरमची मास्टर ऑफ लाइव कॉल सुग्राजियो चरतना और सब वाली जी।

टूपी मेडिकल केयर सेंटर। टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतो पूरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पूरी डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पूरी डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ते अव इतवार पोरस द शहर नौ बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर पूरी डॉक्टर शहजाद फिजियोथेरेपिस्ट द जुमे हफ्ते और इतवार पोरस माजीगर सलूर बजो नवाखला तरमाखाम अतो बजो पूरी और दी सरसरा डॉक्टर इमाद जमान साहब शुगर स्पेशलिस्ट वा द जुमेरात पोरस शहर द नौ बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर बजो पूरी ओपीडी कवि 24 घंटे सर्विस लेबर रूम मेडिकल स्टोर अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी जनरेटर सहूलत और पेशेंट मेडिकल वार्ड नो पता या साथे टूपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा मेले लार टूपी मोबाइल नंबर 0335-666-2878 द्वेम नंबर दे 0336-444-58-88।

अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आज अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हाँ जनाब, थोड़ी सी टेंशन जो है ना जरूर महसूस हो रही है, लेकिन सवाल ये है क्या ये टेंशन जो है ना नुकसानदेह है या हमें कुछ सिखा रही है। शायद ये ही मतलब जो है ना एक छोटी सी बात है, या यही छोटी सी वजह है, या छोटी छोटी यही फिक्रें हैं जो इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं और उसे हकीकत के करीब मतलब जो है ना लेके चलती हैं। आप बतलाइएगा कि हालात व अख्यात और तबीयत मिजाज आपके ठीक हैं, खैरियत से हैं, गुड हैं आप। अगर आप गुड हैं तो अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, एवन रखे, अपनी अमान में रखे और अपने हिफ्ज व अमान में रखे, ठीक है ना। ट्रैक सुनते हैं जी, ट्रैक सुनते हैं आप लोगों को, एक ट्रैक सुनवाते हैं, वापस आएंगे। जय कीमत मेरे साथ रहेगा और सुनते रहिएगा FM 94 रेडियो दिलबर स्वाबी, रेडियो दिलबर से अपने मेजबान ताहिर जमान की आवाज। जय कीमत मेरे साथ रहेगा, ठीक हो गया जी। आज बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस हूँ जी, बहुत ज्यादा मैं टेंशन में हूँ, लेकिन ये टेंशन जो है ना ये कि यहीं भी छोड़ेंगे नहीं बल्कि आप लोगों के साथ बांटेंगे। भाई क्या हो सकता है कि क्या पता मतलब जो है ना हो सकता है कि मेरी ये टेंशन खत्म हो जाए, क्या कहते हैं आप। वैसे आप गेस करें कि ये टेंशन किस चीज की हो सकती है।

आज सिर्फ जो है ना सामान नहीं बल्कि वक्त में ना जज्बात भी जुड़े हुए हैं, और ये कि जज्बात भी मेरे उसके साथ जुड़े हुए थे। जब ऐसी चीजें खराब होती हैं तो सिर्फ मशीन नहीं टूटती बल्कि इंसान का हौसला भी टूट जाता है एक ही लम्हे में, और एक लम्हे में इंसान मुतासिर हो जाता है। अब असल बात यह है कि ये बोर्ड रिपेयर भी नहीं हो सकता है जैन, और यही वो हकीकत है जिसने जो है ना जैन पर एक बोझ डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब नई मशीन जो है ना लेनी पड़ेगी, और ये एक नया खर्चा, नया मरहला और नया चैलेंज है। इसी वजह से आप सामीन से एक बात भी शेयर करना जरूरी है कि देखिए, मैं आप लोगों के साथ हर बात शेयर करता हूँ, और ये मैं जरूरी समझता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं हर पाऊँ। और एक बात भी मतलब शेयर करना जरूरी समझता हूँ कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मेरी आवाज या मेरी आप लोगों के साथ मौजूदगी पहले की नस्बत कम हो जाए, या प्रोग्राम के तसलसल में कुछ जो है ना वक्फे आ जाएं, कुछ साइलेंस आ जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रब्ता खत्म हो रहा है जी, बस हालात थोड़े से जो है ना तब्दील हो रहे हैं, और निज़ाम को दोबारा से खड़े करने में मतलब जो है ना एक टाइम लगेगा। जिंदगी का एक हसूल है, ये मेरी बात याद रखिएगा। जिंदगी का असूल ये भी है कि वो इंसान को कभी एक जगह ठहरने नहीं देती, कभी खुशी, कभी नुकसान, कभी कामयाबी, कभी अचानक रुकावट, ये सब मिलकर जो है ना जिंदगी को हकीकत बनाते हैं। और असल इम्तिहान ये नहीं है कि नुकसान क्यों हुआ है, असल इम्तिहान तो मतलब मेरे स्वीट लिसनर्स, मेरे स्वीट सामीन, ये है असल इम्तिहान तो ये है कि इंसान, ये माइक यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, छोड़ गए भाई, ये क्या मसला है। अच्छा, असल इम्तिहान तो ये है कि इंसान उस नुकसान के बाद खुद को जो है ना कैसे, या इस नुकसान के बाद कैसे जो है ना खुद को संभालता है। और यही वो लम्हा है जब इंसान को अपनी हिम्मत, सब्र और हिकमत को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो चीजें जो है ना दोबारा बन सकती हैं वो मशीन होती हैं जी, लेकिन जो जज्बा दोबारा खड़ा करता है वो इंसान का हौसला होता है। आज दिल में जो है ना एक हल्की सी टेंशन जरूर है, ये सोच कर के एक अहम निज़ाम रुक गया है, लेकिन साथ ही जो है ना ये यकीन भी है कि अल्लाह ताला बेहतर रास्ता जरूर निकालेगा। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना बेहतरी की तरफ हमें लेके चलेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें जो है ना एक पूरा बावर है, यकीन है, पूरा मतलब जो है ना एक बावर रखते हैं हम। याद रखिएगा लिसनर्स के, नुकसान जिंदगी का अहतमाम नहीं होता बल्कि जो है ना ये सिर्फ एक नए आगाज का दरवाजा होता है। सो अगर आप लोगों के दिल में भी जो है ना इस तरह की कोई टेंशनें हैं, आज हम टेंशन के हॉल से बात कर रहे हैं, तो आपने जरूर आने हैं, जरूर मेरे साथ शामिल होना है। ठीक हो गया जी।

साढ़े छले वाला भेजो लला तुसों को मैं ई आखना चाहता कि साढ़े छले वाला भेजो। अताउल्ला खान इस अखेल भी अपने इस मतलब गाने में कह रहे हैं, अपने स्ट्रेट में कह रहे हैं कि जो छल्ले मुंदरियां वगैरह होती हैं लगा तो गुतमो खबर ही गई ना सीधा वापस का जरूरत देने लगी मासर ना। अताउल्ला खान इस अखेल भी साहब लोगों दिया गलां ते यकीन की थी वदे हो मतलब दखल को खबर बंज कम दे नो बावर के यकीन के

यार चाचा तुसा को मैं ई आखना चाहस ना कि तुसा ने मेरे दिल दे तार छेड़ देते ने। ट्रैक के जबरदस्त ट्रैक तुसा ने मेरे को जड़ा दस्या है और मैं तुसा ले ये ट्रैक शामिल भी कर देता है। कॉलर से कहू जी मुंगसर सुख राज दखम जैन नोर सराय के एक ब्याह खबर को 09 38 280 495। अस्सलाम वालेकुम जी, द रेडियो आवाज कम के जी मेहरबानी बम्बी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ दिया, शामिल हुए। 09 38 280 495। टेंशन के हवाले से बात हो रही जी, भाई टेंशन कैसे खत्म होगी, क्योंकि मैं जैसे ही मतलब कॉल्स की तरफ जाता हूँ या आप लोगों से बात करता हूँ तो वो टेंशन फिर दोबारा जिंदा हो जाती है ना। अब टेंशन खत्म होते होते जाके खत्म होगी, ये थोड़ी एक मतलब एकदम से बंदे की टेंशन खत्म हो जाए, एकदम से तो खत्म नहीं होती ना। 09 38 280 495 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने होने का एहसास या अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे यानी कि ताहिर जमान को दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। 09 38 280 495 जरूर आइएगा, जरूर शामिल होइएगा।

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम।

हैदर मुम्मंद मेडिकल सेंटर चारसदा, मोबाइल नंबर 0330 30 30 704। इलाज हागा चुफर को है। बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम, बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश, यो नवे नुम और नवे फार्मूला। आया तासु दखपल मगद तेर सरी दखात में द पारा डेर क्रीमों ने इस्तेमाल कर तेर सरे वृक्षी और ब्याराशी। आया तासु द मग तेर सरो और दागुरु सासुर बेंतहा जदरा गस्ते दे। आया तासु पर स्किन बाने दग मसलिश्ता खुतर उस पूरी तासुर ला इस किस्म क्रीम इस्तेमाल करी निधि और द अगे गट वजह तासु स्किन या इंतहाई सेंसिटिव दे। इस किस्म क्रीम नशे लगो द दस किस्मा ना उम्मीदा जनानो और दिनारिनो द पारा द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द तुर्की इस्तेमाल युवा खास फार्मूला। बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम, बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश कुमच खास फार्मूला द तेर सरो द खात्मे द पारा, कुमच डीर खास फार्मूला द दाहुनो द खात्मे द पारा और कुमच खास फार्मूला द सेंसिटिव स्किन द पारा। पाकिस्तान के फर्स्ट टाइम दग क्रीम द ऑर्गेनिक इंग्रीडियंट्स ना तैयार शिवी दी और इस किस्म नुकसान तावान निलरी ओलचे दग फार्मूला पैराबीन और सल्फेट फ्री दी। देखिए इस किस्म खुशबू वगैरह न दे इस्तेमाल शिवी नुकतासो डेर ना उम्मीद शिवी और द क्रीमानो नमो बेंतहाज मोड़ दे नुयूजल एतमाद कई और द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दग खास फार्मूला को मचे द खास तेर सरो द पारा द दाहुन द पारा और द सेंसिटिव स्किन द पारा तैयार शिविदा। नुबिया इंतजार दस खबरी जर तर जरा दनिजदे कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम, बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश तरला सके। समाज सहर जुड़वी नोर खोंदवर बेलाडोना गोल्ड विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश था सोहम पल सहर जमा पसान खोंदवर जुड़ गई हागम द बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश सरा और टूल और पल मख द मुख्तलिफ किस्म मुजिर असरातोना बचो सा गई। एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वारो इलाजों ना ना उम्मीद शुरू बीमारानों द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो

0: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से जायद तलबा तालबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रابطہ कर सकते हैं।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आरशमा
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स, फोन 09382732 65।
3: टोपी मेडिकल केयर सेंटर कमजे चिप मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आन द अवाम द खिदमत लपारा मौजूद हुई चिपकी डॉक्टर आमिर असलम कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट दैतवार परवज लस बजो ना तरमा खाम सलोर बजो कोरे लेडी डॉक्टर फरीहा मुश्ताक फिजियोथेरापिस्ट द फिर न तर जुमेरात रस कोरे सहर नौ बजो ना तरमाजीगर सलोर बजो कोरे डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट दैतवार परवज यवोलस बजो ना तरमासपिन द्रे बजो कोरे गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिर अमराज जच्चा बच्चा द पीर नतर हफ्ते पूरे माजीगर द सलूर बजो ना तरमास होतन अतो बजो पूरे बाओपी डिकवी जमू सहूलियात ती 24 घंटे सर्विस लेबर रूम अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी पेशेंट मेडिकल वार्ड जनरेटर और नो टूल जरूरी सहूलियात मौजूद थी नो पता याद साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर आयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
5: You're just seconds away from more of your favorite music on 94.

जी बिल्कुल मीना वालन, जम्मू द क्लिनिक नंबर और जम्मू द उस स्टूडियो के द काल कुल नंबर तो आपसे पता था अवका चत पत्र नहीं बिल्कुल वही रही नंबर दासी दे 0300